मुखलाया जन नानक ऐसा हर सेवया अंत लय छाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला दुख दारू सुख रोग भया

रहया सो दर राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो दर तेरा केहा सो कर केहा जित

प्रेम दे चंदन दा। अंतर रतन विचार और अपने अंदर कीमती विचार करते हैं। रतन कीमती होंगे है, दाग जिन्हों हीरे जवाहरात आदि अज सब तो महंगे उ दुनिया के उत्ते कहते सब तो महंगी विचार करते हैं अंदर। सब तो महंगी विचार की है, सब तो कीमती विचार की है, सब तो कीमती विचार यही है कि सब नू प्रेम करते हैं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कोई ऐसा नहीं अखां दे सामने आवे जिन्हों से नफरत करते हुए। महाराज जी कहते हैं भी प्रेम दा चंदन लाया सी शरीर ते, सब नू प्रेम करते हैं। हुण माफ करना जिहड़े साडे लोग किसी नू कोई माड़ा मोटा साफ सुथरा होया देख के निंदिया करन लग पैंदे आ, तुसीं ये सिंगार करके देखिया करे

धरती फिरती है, आखो सतनाम श्री वाहे। जिधर नूं भी देख लो नजर मार के सब पासे मैं इदां ही रौला पिया होमें दा सारे पासे। महाराज कहिंदे नाम तो बिना, शब्द तो बिना, बाणी तो बिना ये अंदरों खत्म नहीं हुंदी। ये जिहड़ी होमै बोलती रहिंदी है ना अंदर, इनू अगर बंद करवाउणा तां मूल मंत्र करिया करो भाई। लगातार आउंदे जांदे तुरदे फिरदे पांच चार घंटे मूल मंत्र करो, साल बाद लगा सुनना भी है करदे समय मूल मंत्र, साल बाद देखियो तुसी अपने आप कहोगे मन पिछले साल वाला अज नहीं है। शब अपनी विचार शब्द की प्रारंभ हुई सी भी जेड़ा पिछली प्रलब्ध करके शरीर च सुभा मिलिया ना, ये सुभा बंदे दा किसे च बदलन दी समर्था नहीं।

हम बारक तेरे तुम्हारी कृपा मैं सुख कणे कोई ना जाने तुम्हारा अंत ऊचे थे ऊचा भगवंत सगल समगरी तुम्हारे सूत्र तारी।

वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू

अष्टपदी दस वसूले पाशे पावे एक बस्तकान विखोट गवावे एक बिना दे दस भी हर ले तो मूढ़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर से नाही चारा ताको की जय सदर्म सकारा जाके मन लागा ब्रह मीठा सब सूखता हूं मन मुठा जि जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंध शापनी दे राज खात पीत बरते अंत उलास अपनी अमान कश बहुर शाले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीता भी खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस तस आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उसते चौगन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल।

अब्रभ देशे आवना करे आवत जावत जन्मय मरय जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार। जो तुम भाने तिन प्रभ जाता दान कुन जनचर प्राता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे माने आपे आप करतन बेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव सियानम सगल सगल ते रहत सबक जाने आत्म की रहत जिस भावित सलय लड़दाए थान थरंदर रया समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप ना।

कथा अष्टपदी साधक संग मुखूजल होत सासंग माल सगली खोत साधक संग भेटे अभिमान साधक संग प्रकट सुगियान साधक संग बुजे ब्रह्म रेरा सासंग सबोतन बेरा साधक संग पाये नाम रतन साधक संग एक ब्रजतन साधकी महमा बरने कौन परानी नानक साधकी शोभा पर माहे समानी साधक संग अगोचर भिलाय साधक संग सदा प्रफुलाय साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग सबकी रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कतुंता

अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा नृलेप जैसे जल में कमल अरेप ब्रह्म ज्ञानी सदा नृदोख जैसे सूर सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञानी का दृश्यमान जैसे राजरंग को लागे तुलपवान ब्रह्म ज्ञानी का तीर्ज एक जो वसुदा कऊ खोद कऊ चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाव नानक जो पाव का सह सुभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैला लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मानो प्रगा जैसे तर प्रयाकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंच दे ऊंचा मन अपने सप्ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन भय नानक जिन पर व्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब पर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा सामदर्शी ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन दे मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस।

भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक पारस सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पात्र रूपना पेख नेत्र सादगी टहल संत संघेत करना सुने काहू की निंदा सबते जाने आप सुखो मंदा गुर प्रसाद विख्या पर हरा मन की बासना मन ते ठरा इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानकूट मदे को ऐसा अपरस वैष्णव सो जिस प्रसन्न मिशन की माया ते हुए भिन्न।

भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मंदे बिंसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सा संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत ऊतम होवै भगवंत की टहल कराय नित नीत मंत्र अर पाए मिशन प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा।

जो जो जपै तिसकी गत हुए सा संग पावे जन हुए कर गिर बांधुर उतारे पास प्रेत मुग्ध पाथर को तार सर्व रूप का अवखत नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कितना पाइय धर्म नानक तिस मिलाए जिस लिखा।

ब्रह्मसोय कई गोड़ पार ब्रह्म के दास तिन होबत आतम प्रगास कई गोड़ तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे कई गोड़ नाम रस पीवे अमर भय सादी जीवे कई गोड़ नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह समावे अपने जन को सा सा संभारे नानक होए परमेश्वर के प्यारे।

जिसको हर पर मन चित आवे सो संत वेला नहीं डुलावे, जिस पर अपना कृपा करे सो सेवा को किस तरह डरा, जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया, सूदत सूदत सूदत सिजिया गुरु प्रसाद तत् सब बुझिया, जब देखो तब सब कुछ मूल, नानक सो सुखम सोई स्थूल, न कि जन्मे न कुछ मरे अपन चल त्या भी करा, आमन जामन दृष्ट आन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल में आप आन के जुगत राज थाप थाप, अविनाशी नायक शिखंड धारण धार्यो ब्रह्मंड, अलख अपे पुरख प्रताप आप जपाए था नारक जाप, जिन पर जाता सो शोभा वंद सकल संसार द्रे धर्मंत, प्रभु के सेवक सगल उदान प्रभु।

उनको मान अभि महान जय स्वरूप केवल जगदीश शाल शत्र लगत गौकीस जय जो सुरपी जो संग समावे ते किसे भूखा मंत्र बतावे करन ग्रामन करने हार नान करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा आपन संग मनाई तब कमन माए बाप मित्र सुध भाई जय सर्व कलापे परवीन दे तहबेद देव कहा कौचीन जब अपने आप रुतारे तो शगन अब शगन कहा विचार है जय अपन ऊजा भनाब नेरा तय कौन ठाकुर कौन गये चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानू आप जय शल्ला शेद अपे समाया वहाँ किसे ब्यापत माया आपस गुआ पे आदेश ते गुण का नाही परवेश जय कह एक एक भगवंता तय कौन अचिंत किस लागे चिंता जे अपने आप दियारा तय कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बेन दूज दे ऊचा नानक आपस गुआ पे पहुचा जे आप रचो प्रपंच आकार ते गुण में किन्नो विस्तार पापुंत पही कहावत गौ नर को स्वर्ग वंशावत आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम वह बहार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान अपन खेल आप कर देखे खेल संकोचे तो नानक एक अभगत भगत आप जब सरे पासार संत प्रताप दो पाक अपे तनि उनकी शोभा उन्हों बनी अपे कौत करे आनंद चो जापे रस भोग जोग।

आर राष्ट्रपति, आप कथे आप सुनने हार आपे का विस्तार जात सभाविता सृष्ट उपाय अपने भाणे लय समाए। तुम ते भिन्न नहीं किशो अपन सू सब जगत परोहे। जागो प्रभ जीव आप जाए सच नाम सोय जन पाए। सो समदर्शी तद का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता। जी जंतर सभता के हाथ दीन दयाल अनाथ गुनाथ। जिस राखे तुस को ना मारे सो मुआ। जिस मनो बिसारे तिस तज अब्र कां को जाए। सब श्री एक निरंजन राय। जी की जुगत जाके सब आद निर्वाह जानू साध गुण।

घर पर व्यापे मेले साह संग मिल करो आनंद गुण गाओ पर परमानंद राम नाम दत्त करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरण गा यह सुभाओ आठ पैर प्रापेखो रेरा मिटिया ज्ञान मन से अंधेरा सुन विदे सिरदा बसावो मन छे नानक फल पावो हलत बल दुए लियो सुवार राम नाम अंतर उदार पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन बसे तो साज परिख्या पंथ

मत पूरी अमृत जागी दृष्ट दर्शन पेख उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जागे अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेव प्रवान अंतर जामे पुरख प्रधान जिस मन बस।

नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समेगरी एक सघाट माहे अनुग्रह नाना दृष्टा है।

अगनुसागर तरव अर्थन के पर लिहो पंडार नान गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग पच परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जागे रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर ना बारंबार नानक जी का ए आधार उत्तम सलोक साध के भजन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत होत उदार अवतरे लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लगा हर रंग जय जय शब्द अनाहत बाजे सुन सुन अंध करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महात के माथे नानक उदरे तन के साथे शरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भय सब रेन अमृत नाम सात संग लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण वही सेव की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुंदर सना कहते कर प्रसाद दया प्रभतारी नानक निभि खेप हमारी प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिसमन बसे सोत निदान सर्विच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सबते ऊज पाए स्थान भवर न होवे आमन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सांत रिद नभ निद बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या ताप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सबके मद

विचार ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए मन सुरत होवे मन बुद्ध मन सगल पवन की सुध

जाने मन कोय, मन्ने मार्ग ठाग न पाए, मन्ने पास्यों परगट जाए, मन्ने माग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय।

आचार्य गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से ही तदनो गावे जो तद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे

वेद हथियार पाओ खला अगन तब ताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़िए शब्द सटी टकसाल जिनका

समस्तस्तामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं पीत हैं पेह हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं पेस हैं पजंग प्रयाशंद अगाधे बाधे नंदी स्वरूप है नम सर माने समस्त दिन दाने